शिवा ओम शांति ही शांति ही शांति ही हरि प्रेम सबले श्री सीतापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन पुत्र

हनुमान की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, आदि शक्ति जग जननी अम्बा भवानी माता की जय, सीतापति राम चंद्र की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय सीताराम।

ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे धर भी उसे धरारे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Whoever has your name in his heart has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

ओम राहे सुख कर, ये मंत्र मन हर, ओम शांति ओम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।

दीप ज्योतिर नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम आत्म तत्व प्रबोधाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते लक्ष्मी करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम मम शत्रु विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते

हरिनो वंद विशूद विज्ञान कविश्वरा कपीश्वर ऊर्ववसिति संहारा कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नत्तु अहं राम वल्लभम् यन्मया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवसुरा यत् सर्वदा मृषैभा भाति सकलं रजो यता हि ब्रह्मा यत्तपादवम् एकमेव हि वबम्बोरिस्थितिर्शावतां वन्द्यहं तमीश कारणं परं रामगिरीश्वरीं हरिं नानपुराण निगमागमा सामतं यद् रामायणे निगतिः कुञ्चते तोऽपि स्वन्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाता भाषा निबन्धमति मञ्जुला मातनोति श्रीराम जय राम जय जय राम जॉइन टुगेदर डिवोटीज

पवन सुत हनुमान की जय। शरणम प्रभु बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। मे द ब्लेसिंग सर्व देवता सर्व देवी सब पर कृपा हो। मे द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल द होली वंस मे द ब्लेसिंग ऑफ ऑल द देवता देवीज द ऋषिज द पितरस मे द ब्लेसिंग्स बी अपॉन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो डिवोटीज विल पॉज टू एंजॉय अ ब्यूटिफुल ओपनिंग भजन एंड ऑफ कोर्स व्हेन रिटर्न वी विल डाइव इनटू द कथा फॉर टुडे। जय श्री राम।